या टोना बातेना तेरंग लेसन दिना कोनी न्याकन टोपो जसकी दले सोसर कबजी मिलेसन रानी कन्याना दो नुग अलतन लेन दोले नुग सुनी रेवा तो ताते गेसन जना छुयो टोपोज किन जना सो आदा रंगे ची मासो लेसन दे गर्सोन दु पागती दले आ ता न्याकन का कंज गर गाग याना गल सरवा छलगो कतजो कोटी से तुम कतजो सागु गोसी ग Tamar tuk sitemi tak su lisan nga shik tang riri Ta lawa tang lama Zamba damsi mipir Ta khachik lindu yang tang kyaarta kubdugi na Su lisan nga shinkin ki nyankin nyonu la Andi nyannu ga yang Su radin tichin dam na Tuhu mnyuaz go ka Ati yang tang dhik juu ka chi gu Re tana Suni isi terang lisan daga kubdugi taarta Lama dhik mu chik langbi Tuk sarsam si mur gong la sikil sikunu gu Lama dhik alarki nyamundi Yang guru nyongzgir.